0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि उन्होंने रूस और यूक्रेन की तवानाई बुनियादी ढांचे पर हमलों को फौरी तौर पर रोकने वाली एक जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। तहम यूक्रेन के सदर

0: नहीं। नस्ट्राल इस बार खुशकिस्मत था और आखिरकार उसने सनती तौर पर तैयार होने वाली पहली वॉकर टेप दरियाफ्त की। एक साल बाद वेलक्रो टेप्स को मार्केट में मुतारिफ करवाया गया, लेकिन उन्हें वो तवज्जो हासिल नहीं हुई जिसकी उनके मोजिद को तवक्को थी, क्योंकि वेलक्रो टेप्स का वेलक्रो ब्रांड, जो फ्रांसीसी अल्फाज वेलवेट और हुक से माखूज है, पहले ही दो प्रांग हरीफ ईजाद कर चुका था। जूतों के तस्मे और जिप, मेस्ट्राल अपनी मसनूआत को अमरीका ले गया और महसूस किया कि तेज़ी से बढ़ती हुई एरोस्पेस इंडस्ट्री, ख़ासतौर पर खलाबाज, वेलक्रो से फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि वह आसानी से अपने स्पेस सूट पहन सकें और उतार सकें। डाइविंग सूट बनाने वालों ने जल्द ही उसकी पैरवी की और जल्द ही इसकी सूट्स और खेलों के दीगर सामान में हुक और लूप टेप इस्तेमाल होने लगे। वेलक्रो, जिसे इब्तदाई तौर पर जिपर के बगैर जिप के नाम से मार्केट किया गया था, वक्त के साथ साथ बच्चों के कपड़ों की मसनूआत में इस्तेमाल होने लगा और 1960 की दिहाई के वस्त तक मेस्ट्राल का कारखाना सालाना 60,000 किलोमीटर से ज़्यादा वेलक्रो टेप्स तैयार कर रहा था। वेलक्रो टेप इस फैशन डिज़ाइनर की कामयाबी के बाद एक फैशन आइकॉन बन गया, जिसे फैशन शो के लिए आखिरी लम्हात में अपने कपड़े मुकम्मल करने पड़े, लेकिन जब उसके इस्तेमाल के लिए बटन ख़त्म हो गए तो उन्होंने मेज़ पर रखी वेलक्रो टेप का सहारा लिया। स्विस मोजिद की वेलक्रो प्रोडक्शन में 1978 तक तकरीबन इजाज़तदारी थी, लेकिन जब वो अपने पेटेंट के हकूक़ की तजदीद करना भूल गए तो सबसे पहले चीन और जनूबी कोरिया में तैयार की जाने वाली सस्ती तकलीद ने मार्केट को भर दिया और फिर मकामी सनतकार हर एक मुल्क में अपने अपने ब्रांड्स के साथ नमूदार हुए। वेलक्रो टेप्स, जो आज दुनिया की सबसे ज़्यादा कार आमद ईजादात में से एक हैं, हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती हैं, ना सिर्फ कपड़ों या जूतों में बल्कि सजावट की मसनूआत से लेकर दिल की सर्जरी तक बहुत से मुख्तलिफ शोबों में ये देखी जाती है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
1: अहम इजादात।